0: तुमको वावी
1: केवा ये लाइन से तो कुन्यू उत्पादे मैं रेंटी फिश का वन लाला ना थी ये वन एम प्रोविंस तिल्यार वन एक आज़ाब सीध देन्याना नास्ते आरक रेंगे इतम तिल्यरिंग नतो सी निजान नफ नाटर रेटर रेटर नतो तो वटांतो करकरा बिप्यूं पी मनोजे माफ नाटर चेतिले तुंगा यंत्र फ्तोना देश में चुए अंदी जान आम फंदा मीना ना वोटन वे माफ नाटर जोगा मित चारा मिंची इरीना बाव फुआजा वे तुना बाव का कुम बते ना वोट सोफोना वारत सिद्धि वे आर वे मलगासी अल्लाह सब बेंच फना रांडा लाना फंब बते ना वे अनारा दलाना फोना मलगासन
2: निर्जित न्यान्दे जो दिफ़ाम बुलाना मिस निफ़ामु जो वतावट नून लेट फीना ने वजह से मुझे मंदिर फोन जो लुजान अंतान नरी हुआ दिया ट्रांडे ने जान वटा दूला इन वर्ग में वो मज़ावा सुनातारे क्यों आरा करा कल्लू बुंदलू देखें नून नातारे क्यों आरा फंदनिया नलू तुकने फा नंदिया वटा मज़ेमिच फिपेटा तकिना मीना फ़ासिंगा रफा शालमान लुजान तेना फिपेटा तकिनी या आरा कनी तंडा ने वे लाला ना सिनी न्यान जाना न
3: Efa ela yang efa tamni Disney fumar. Esok umpah efa kambam mandi di sini lah. Siapa tapak gula nangkal di sini umpah itu nak tapak kebun ni nanti. Ampam pamanara kalalan leh sih mandi nanti. Perlu kas busi sultanan saya kampai.
4: Afen petaf so saya tendewan tanarif. Siapa fona num kekel kel mesel fikatuna lelala nanda rasanya yes. Tena maaf pe. Asal nienze anan. Tena sal pe mesel nanti we suara sote bola fizalina pe kule. Fandi ananam bola yenza nape. Koyo merasa karapula tena ter pe mesel. Mara saya fana bau fuaja. Fani aku sot nanti we mambula rata. Tena cisi nin natsum mesel nafa fizalina pe dawol. Yo petat cesane tu kene usarut nenu le petat cesane, we am le ftiran le ulah face ona tu pilan le we nate lula tu kene kas kas kene le fikina nasi ntar ntar rasawa tu kene dentan nasante we manokrasi le prafona we atafat we mandian de fata ni apa cotan talutu familam tanja nape?
5: Tuiran nale lua avenya petafwa dia wenyambusa, soni avetia tiran dia wenyambusa. Niatun nanti anak nanti tisanya, namu jerara api anak kafina. Avalina wanai pandelusan, fiskafan lal nat saya. Fa futnya nyulang asanya, aman lonan saya sabat saya di. Naya ramantian di sutra, di manan sasa wanai pandesa si mata saya, saya mli falanarita na futi vufeta terakalu.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafu.

0: गिलास तुमको वा भी
1: ओटा अम्बुलेंस दे मिसि बना दिरे आ स छ त नम्बर आ ब के प जे यो म दे यो म फुल फुल बला बिते पिलोट यो त ओ जन म नफ नरा पुचे न कु तुपनी तुपने छ न फन बार न छु बना पुचे न ले बे जन र के न यसिन म फन सुन अर मनारा के जान कु यो म बेच पना ना नसा कु बोल दे दे बे युजन बोला तेरा का इन तारीख बे बोला तारीख बे ची तभी रात सुबह सी रबड़ आई थी बेंच ना सा जी वो तो हम बोला साफ चार्ट डे पर सी
2: साफ बे नियम के कंजान वो नियम ये रहना बे तुम पुल्टो ना पहले पुल्टो ना मार तो पहले पुल्टो ना पता लगा ना मैं देख के चेक करूं

0: लाश तुम कुफा भी
1: बमंगा तक आम को मिन नंबुमंगा केर संजयं बाई सेरों फुकतान नंबुमाइंस फावटन सेने बुमाइंस अनोटन समास निनिन नमीच ट्रम सोफा अंड्रास अंड्रास लाव टेनिस फिजरा नतान्य टेपे अंत्र ते ओमनी रोपुल ते ओयन नाम तमले लेफोरु निस फंड्राइसना नारा नंद्राया ते ओटन फिट फिन ले प्रेस नो इस मुझान स्टे ना प्रेस नो फोटो में करते मोबाइल ते फिर पेरां फुट से लेसुरत ना टेंटे से सेंबा सुरत प्रेस नो ते सान ना तो ने ने वे अंदो सुरत ना रा वो तो ये वेतना मेनो तुझी सन्ना तो न तुम रखाये सिस्टीलो इस